0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तेरे घर वाले मान गए तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो उठा लेंगे तुझे, ऐसी क्या बात है, मेरी बंदी है तू, देख ले समझ ले एक बार. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आप प्लीज मुझे जल्दी ऑफिस छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं आपकी कैब में ज्यादा देर बैठना नहीं चाहती. क्योंकि आप अपनी बंदी को थ्रेटन कर रहे हो कि घर वाले नहीं माने ना तो जो ऐसे उठा के ले जाऊंगा. बट दिस इज वॉट इंडिया इज ऑल अबाउट, दिस इज वॉट रोमांस इन इंडिया इज ऑल अबाउट. अ वेरी हैप्पी मंडे टू यू. और अगर मेरी तरह इस मंडे की हसीन शाम को आपके भी ऐसे दर्शन हुए हैं द ग्रास लैंड्स ऑफ इंडिया के प्यार और रोमांस की लैंग्वेज से, देन व्हाई डोंट यू टेल मी ऑल अबाउट इट. या फिर अगर मेरे कैब ड्राइवर की तरह आपका भी लव लैंग्वेज कुछ ऐसा ही है कि मार देंगे उड़ा देंगे, देन आई थिंक यू एंड आई हैव अ लॉट इन कॉमन. बिकॉज डीप डाउन इनसाइड आई माइट साउंड अ लिटिल क्लासी, बट हूँ तो मैं भी बैड गुंडा ऑफ इंडिया. सो हिट मी अप, लेट्स हैव अ कॉन्वो अबाउट इट. एंड व्हाइल यू डू दैट, अगर ठीक से नहीं मैसेज किया ना उठा देंगे, और कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: घर में तो आप ये बोलकर जाते हो दैट आप बहुत स्टूडियस हो गए हो, इसीलिए कॉलेज की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, 100% अटेंडेंस. लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू हैव द हॉट्स फॉर योर प्रोफेसर.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कन्फेशन है देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, कैसे हैं आप?
1: यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने क्यूट साउंड करते हो ना भोले से, और आपकी जो मैंने फोटोज देखी है इन योर इंस्टा प्रोफाइल, यू आर सो हॉट यार.
3: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
1: क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान हुई थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
3: सो रोशी, आई वाज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशी, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन कि यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि करा उन्होंने स्टार्ट था बट ये गलत ना समझ जाए, ये क्या हो रहा है ऐसे. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं. देन रोशी, थोड़ी सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई. थोड़ा और पास आए और मैं तो रोशी डर गया, बिकॉज मैं ममाज बॉय हूं. मैं अगर मम्मी को बता के भी आता हूं कि यार मम्मी मैं डेट पे जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया, फिर मम्मी को क्या बोलूंगा, ऐसा ऐसा कुछ हुआ. और मुझे शादी के बाद ही करनी थी ये चीजें, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था. मतलब मुझे मना भी करना था, मैंने कहा यार रूट भी नहीं हो सकता, बंदी भी अच्छी है. बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए.
1: मैं तो आपसे जानना भी नहीं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली फिर सब कुछ हो गया कि अभी कुछ कुछ बाकी है. अब तो मैंने
3: रोशी, उसके बाद मैंने फिर बहाना करा कि मम्मी की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में. तो मैंने कहा नहीं नहीं यहीं से साइड में पापा को उठाना है, तो आप प्लीज रिक्शा में चली जाओ.
1: भाई मैंने इनफ नमूनों से बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन आप जैसा तो कोई भी नहीं है. मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्ट्री कॉलर.
3: प्लीज.
4: यू've been roshified.
1: ओ गॉड, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर. अगर मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह आप भी निहायत ही शर्मीले किस्म के इंसान हो, देन आई थिंक वी शुड टोटली टॉक जस्ट फॉर अ लार्क. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So hit me on Instagram या FP, but whatever you do, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
0: જય ગુરુદેવ. ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર પિસ્કેટવે આપને અને આપના પરિવારને ગુરુ પૂર્ણિમા અને રુદ્રાભિષેક મહોત્સવમાં સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આપે છે. શનિવાર 1 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપયજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 732-357-8200. જય गुरुदेव.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
0: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: उसको पता ही नहीं इंतजार का दुख जॉन, मैं कभी उसके पास देर से गया ही नहीं। ये लाइंस ऑब्वियसली जॉन इलिया साहब ने लिखी थी और ये इतनी खूबसूरत है बिकॉज अक्सर क्या होता है, आई हैव रियलाइज्ड इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्यार की धूप में तप तप के आशिक बनते हैं और वो जिन्हें प्यार इतनी आसानी से मिल जाता है दैट दे प्रोबेबली डोंट रियलाइज द वर्थ ऑफ लव बिकॉज वो इतनी बिना शिद्दत बिना मेहनत के ऐसे ही मिल गया। एंड समटाइम्स क्योंकि प्यार आसानी से मिल जाता है वी एंड अप टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, जैसा मेरी जिंदगी में हुआ विद द लॉर्ड ऑफ मेन दैट आई लव्ड, क्योंकि मैं बिना किसी मेहनत के बस ऐसे खिंची चली गई प्यार में, सामने वाले इंसान को लगा कि हाँ इसको तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, ये कहाँ जाएगी, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव। एंड एवरी सिंगल टाइम उस इंसान को कितना गम हुआ इस बात का कि अगर मैंने इसे समेट कर रखा होता तो शायद ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से ना निकला होता। अगर आप भी एक ऐसे इंसान है ना जिसने शायद ना चाहते हुए भी प्यार को फुली ना रियलाइज किया, ना रिकग्नाइज किया, ना उसे इम्पोर्टेंस दी और अब वो आपके साथ नहीं है एंड यू आर रियली मिसिंग दैट पर्सन एंड द रिलेशनशिप एंड द लव, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इंस्टा पर या एफबी पर, लेट्स गेट टॉकिंग। मैं आपके लिए शायद वो इंसान वापस तो नहीं ला पाऊंगी पर शायद वी कैन कनेक्ट ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट लव ट्रूली इज। एंड टू डू दैट फाइंड मी ऑन द ग्राम, फाइंड मी ऑन एफबी एंड व्हाट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बचपन में स्कूल की वो कहावत याद है, इफ यू लव समवन देन लेट देम गो, इफ दे कम बैक दे आर योर्स, इफ दे डोंट दे नेवर वर, ये वो इफ दे कम बैक ना, इसका मतलब है कि किसी और को वो इंसान पसंद नहीं आया. आपका स्टैंडर्ड और चॉइस इतना गिरा हुआ है, भेज दो उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर, बिकॉज बिफोर यू नो इट यू विल बी कॉट इन अ रेड फ्लैग रिलेशनशिप जो महा टॉक्सिक है. और उसके बाद बातें करके भी हम उसका कोई इलाज खास कर नहीं सकेंगे. लेकिन अगर ये बातें सुनकर आपका मन तो बहुत करे कि रोसी हमारा जो बॉयफ्रेंड है ना, हमारा जीना इतना परेशान किया है कि हमारा मन करता है उसको उल्टा लटका दें हम पंखे से, उसे करने से पहले कन्या, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, एंड कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मुझे फर्स्ट एड पर जाना है और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू लूज थोड़ा सा वेट बिकॉज मैं अपनी परफेक्ट ड्रेस में फिट करना चाहती हूँ और उसमें ना मुझे आई थिंक 2-3 किलो और लूज करना पड़ेगा. बता दो ना रोशी ऐसे कैसे करें.
1: रोशी के DM से
0: ये मैसेज मुझे समृद्धि ने लिखकर भेजा. एंड सैम यू नो व्हाट बेब, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे पता नहीं है कि व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ लूजिंग वेट एंड दैट टू लूजिंग वेट क्विकली. लेकिन आई कैन टेल यू दिस दैट एज अ पर्सन जो सारी जिंदगी डाइटिंग करता रहा है, द वन थिंग दैट हैज हेल्प मी लूज यू नो वो एक्स्ट्रा किलोज टू गेट इन टू माई परफेक्ट ड्रेस, मैं ज्यादा पानी पीती हूँ, ज्यादा फाइबरस फूड्स खाती हूँ. ज्यादा पानी पियोगे तो यू विल ऑब्वियसली लाइक लूज अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, व्हिच इज ग्रेट फॉर लूजिंग water retention. High fiber khana khaoge, yani ki fruits and lots of steamed and boiled vegetables, usse aapki nutritional deficiency bhi nahi hogi aur saath hi saath you will have more fiber, less fat, and that will help you lose a little bit of weight. But everything said and done, whether aapki first date ho na ho, whether you are in a relationship ya nahi, I always tell everybody that every day kam se kam 20 minute exercise kar lo. Isse sirf aapki body healthy nahi rehti hai, pata hai Samriddhi, isse aapka mind function bahut sharp रहता है. ऑल द फील गुड हॉर्मोन्स लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो. सो डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, हैव अ लॉट ऑफ वाटर, हैव अ लॉट ऑफ हाई फाइबर फूड, एंड हु नोज यू विल फिट इनटू योर ड्रेस लाइक अ ड्रीम. और एक बार आपकी ड्रीम डेट ऑसम जाए, वेदर और नॉट यू फिट इनटू योर परफेक्ट ड्रेस, मुझे इसके बारे में बताना मत भूलना यार. आई एम सो एक्साइटेड दैट मैं अपने वर्ड्स ही भूल रही हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब मैं छोटी थी आई वॉज डायग्नोज विथ थायरॉयड और साइमल्टेनियसली मतलब मुझे काफी सैडनेस भी लगती थी और क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि क्यों हो गया मुझे थायरॉयड ये वो, मैं अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे सारे टाइम बंद रखती थी और अगर थोड़ी बहुत सनलाइट आती थी ना तो मैं उसके आगे कॉटन ड्रॉ कर देती थी और माई मॉम यूज टू गेट सो अपसेट, शी वॉज लाइक नेचुरल लाइट नहीं है तेरे कमरे में और बीमार होती जा रही है इसकी वजह से, एंड आईड बी लाइक मॉम प्लीज ठीक है मुझे नहीं चाहिए लाइट वाइट, मुझे बंद कमरे बहुत अच्छे लगते हैं. Till I actually started reading about Vastu और मैं interested हुई astrology, tarot, Vastu में, and that's when I figured out, आपको पता है अगर आपके कमरे में ventilation proper है, आपकी हवा का आदान प्रदान ठीक से हो रहा है, खिड़कियां आप एक घंटे के लिए कम से कम अपने कमरे की या घर की खुली रखते हो और basically the ventilation and light in your room is as optimum as possible, तो जो भी sadness, depression या bad luck या फिर negativity है आपके घर में वो सब गायब हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मेरा thyroid ठीक हो गया, but उसके साथ साथ जो मुझे sadness होती थी ना बचपन में वो सब ventilation and genuinely just letting the sunlight in की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई है. And this is such a doable vastu trick. आप अपनी जिंदगी में से try करके देख सकते हो and I'm already telling you that इसका success rate is 100%. और एक बार you feel it as well, और आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हो ऑब्वियो, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू हिट मी अप कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: घर में तो आप ये बोलकर जाते हो दैट आप बहुत स्टूडियस हो गए हो, इसीलिए कॉलेज की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, 100% अटेंडेंस. लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू हैव द हॉट्स फॉर योर प्रोफेसर.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कन्फेशन है देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, कैसे हैं आप?
1: यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने क्यूट साउंड करते हो ना भोले से, और आपकी जो मैंने फोटोज देखी है इन योर इंस्टा प्रोफाइल, यू आर सो हॉट यार.
3: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
1: ओ क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान हुई थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
3: सो अरुषी, आई वॉज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कॉमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशी, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन की यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि करा उन्होंने स्टार्ट था बट ये गलत ना समझ जाए, ये क्या हो रहा है ऐसे. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं. देन रूसी थोड़ी सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई. थोड़ा और पास आया और मैं तो रूसी डर.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

You know, हम सब जिंदगी में स्ट्रेस के फेजेस के थ्रू गुजरते हैं एंड स्पेशली हाईली इमोशनल पीपल लाइक माई सेल्फ. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं इस इमोशनल स्ट्रेस में बिखर ना जाऊं, टूट ना जाऊं. बट आई टेल माई सेल्फ थ्री थिंग्स और हर बार जब मैंने ये तीन चीजें अपने आप से कही हैं, आई हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर ऑन दी अदर साइड. और वो तीन चीजें हैं विच आई लाइक टू शेयर विद यू. नंबर वन, एवरीथिंग इज ओके, आई विल मेक दिस वर्क. नंबर टू, मैं सेफ हूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू इमोशनली या मेंटली फील वेरी थ्रेटन्ड एंड फ्राइटन्ड एंड दैट कैन कम्प्लीटली ड्राउन यू. और नंबर तीन, इस टफ सिचुएशन में मैं पक्का कुछ सीख कर ही उभरूंगी. एंड एवरी सिंगल टाइम आई हैव बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. अगर आप भी जिंदगी में ऐसे किसी फेस के थ्रू गुजर रहे हो, यू आर फाइंडिंग लाइफ वेरी हार्ड टू डील विद, अपना नंबर भेजो ना, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम द गर्ल हु बिलीव्स इन लव. पता है क्यों? क्योंकि जिसके पास लव है

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल,
2: मालूम
3: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा हूँ मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: हाय ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत आफतें उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से चुप चुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s 2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती हैं और फिर वो एक बोलती है, अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आरडी बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटिफुली संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: I'm sorry.
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans with Charu only.

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शकी हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती हैं कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, कहा?
2: सुना
1: कुछ हुआ क्या?

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक क्लासिक ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है। जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आरडी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जो मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में तीन गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और दो गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही हैं
4: आप? कौन बोल रही हैं?
6: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
4: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
6: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
4: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
6: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
4: ये तो वहाँ से मेरे पास,
6: अरे यार
4: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
6: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
5: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तो तेरा कुछ जा रहा
4: है।
6: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
5: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, आशा भोसले एंड उषा उथुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उथुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उथुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उथुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: कोई यहां आहा नाचे नाचे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई सच अ लवली सॉन्ग, आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
4: पुरानी जीन्स
0: विद चारू, ओनली

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साड़ू साड़ू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और साड़ू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, यार एक पिक्चर में काम करना था उन्हें मेरी। मैंने कहा, मैं तो उछल गया, मैं कहा व्हाय नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपीयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा, आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट टू पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में, राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन्स वीन्स तो बता दीजिए। बताएंगे यार, बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ, तो ये शेर है असद भोपाली साहब का। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी उसके गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहां सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल
3: मालूम
4: से होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
4: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा
4: है,
3: मतलब
4: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे, मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा है, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रैपो।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये मिड 80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: क्या कहा?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय आरडी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एसडी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए, एंड देन इवेंचुअली आरडी बर्मन को साइन किया गया। एंड फिर एज यूजुअल आरडी ने अपने आरडीएक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था द वेरी आइकॉनिक द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी लाल पीली नीली कर रखी हैं? जिसकी भी याद में कर रखी हैं, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Purani Jeans with Charu. Only on

0: दिल देना सीखो जी।
1: बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में चाहे इनका नाम नहीं लिया जाता हो, लेकिन सच बात यह है कि बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया गाने इन्होंने बनाए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इनके नाम पर, वो अचीवमेंट ये कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे मेल डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई बढ़िया म्यूजिक बना के। मैं बात कर रही हूँ उषा खन्ना जी की, एंड दैट टू व्हेन शी स्टार्टेड लेट 50s, 60s, 70s, उस टाइम में। तो उषा खन्ना जी के कंपोज किए हुए गाने तो हम सुनेंगे ही, उनकी बातें भी और करेंगे, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ गाने गाए भी हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं वो मेनली किशोर दा ने गाया है, लेकिन इसमें जो थोड़े से आपको फीमेल वोकल्स सुनाई देंगे, वो जो एक हमिंग है फीमेल वॉइस में, वो उषा खन्ना जी की है। जॉनी मेरा नाम का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रे। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: खा लिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स,
2: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिन बच्चों की चॉइस बाकी सबसे अलग होती है, उनके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना कैसे जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत दुआ है आपकी। अभी जो है वो जून का महीना चल रहा है, और जून महीना जो होता है वो दुनिया भर में प्राइड मंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये LGBTQIA जो कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अहम मंथ माना जाता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, दुती चंद जो हैं वो इंडिया की सबसे तेज महिला मानी जाती हैं, और 2019 की बात है, उन्होंने सब लोगों को ये बताया कि मुझे मोनालिसा नाम के एक लड़की से प्यार है। अब देश के लिए ट्रैक पे उन्होंने इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर सबसे पहले अपनों ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज लाखों घर ऐसे हैं सिस्टर जहां कोई बेटा है जो किसी लड़के से प्यार करता है, कोई बेटी है जो लड़की से प्यार करती है, लेकिन सबसे बड़ा डर जो उन्हें है वो लोगों से नहीं है। उन्हें डर है खुद के घर पे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बहुत ऑकवर्ड होती है। मेरा आपसे सवाल है कि जब घर में बर्दाश्त उन्हें किया जाता है, गले से नहीं लगाया जाता, तो वो बच्चे अपने आप को पूरा कैसे करें?
4: एक्चुअली क्या है, उनको घर वालों से एक्सेप्टेंस चाहिए
3: जी,
4: और घर वालों को सोसाइटी से। बेसिकली क्या है कि हर आत्मा को रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और उसको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए उस चीज के लिए जो वो है
3: जी,
4: नॉट सोसाइटी जो चाहता है।
3: बिल्कुल।
4: वो फ्री फील करना चाहते हैं जो भी उनकी आइडेंटिटी है जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, और इसलिए बहुत समय ले करके वो ये करेज भी रखते हैं कि अब वो सबके साथ शेयर करेंगे। बट अगेन उनको अपने घर वालों से एक्सेप्टेंस चाहिए। घर वाले तब तक एक्सेप्ट कर नहीं पाते क्योंकि उनके लिए भी ये डिफरेंट होता है, एंड इट इज द ट्रूथ कि कई बार सोसाइटी और कई बार रिलीजन या रिलीजियस हेड भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। एक्सेप्टेंस तो आप छोड़ें, और ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट,
3: हाँ, ज्यादातर
4: और ज्यादा बॉयकॉट करना, मजाक उड़ाए जाना, कई जगहों पर उनका आना जाना बंद कर देना, सोशल गैदरिंग्स में उनको इनवाइट करना बंद कर देना। इनफैक्ट कई बार उनको ये भी डर रहता है कि अगर और सिबलिंग्स हैं तो उनकी शादी कैसे होंगी, उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। सो आई थिंक देयर इज सो मच फियर कि सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करेगी, इसलिए इमीडिएटली वो कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने परिवार से अपनी choices के बारे में कैसे बताएं? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो अगर मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मैं ऐसा एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, और इस वक्त मैं 19 साल का हूँ, घर पे माहौल है, मैं अपने आप को क्या कहूँ कि मेरे अगली जो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो उसमें मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ? मैं अपने को क्या सलाह दूँ, क्या बात करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ?
4: मुझे लगता है कि ये जो एक अंदर में आश रहती है ना कि सब मुझे एक्सेप्ट करें, अगर इससे हम परे चले जाएं,
3: जी,
4: टेलिंग आवर सेल्फ्स और अपने को ये समझा करके कि शायद चलो ये तो कम्युनिटी डिफरेंट है, आप दुनिया में भी देखें हर एक को हर एक से एक्सेप्टेंस कहाँ मिलती है।
3: जी बिल्कुल सही है।
4: मना रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, लोगों के अलग अलग ओपिनियन होना, ये कॉमन है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको ही कहेंगे, भाई यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कोई नहीं भी करता उसके बाद आप अपने से कैसे बात करते हैं,
3: वो बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी शायद वही है कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास है, दुनिया क्या बोलती है शायद उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
4: कभी कभी तो ऐसा होता है सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, हाँ, पर आप अपने को नहीं करते हैं।
3: हाँ, सेल्फ डाउट होता है।
4: तो कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योर सेल्फ, आपका अपने से कैसा रिश्ता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप वो फील करेंगे जो कॉन्वर्सेशन आप अपने से करते हैं। आप वो फील नहीं करते जो कॉन्वर्सेशन लोग आपके साथ करते हैं। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो भी आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि शायद ये आज नहीं समझते या इनको किसी चीज का डर है, बट मुझे होप है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांसफॉर्म होंगे, देन आल्सो यू विल बी फाइन। लेकिन सब आपको एक्सेप्ट करते हैं और कोई एक है जो डिसरिस्पेक्ट करता है, एंड दैट इज द कॉन्वर्सेशन यू हैव विद योरसेल्फ, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते।
3: तो एक को बड़ा ना बनाएं जो सब एक्सेप्ट करते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करें।
4: इस केस में मुझे लगता है कि कई बार क्योंकि इस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसका इतना एजुकेशन नहीं है, तो जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो ज्यादा आती है।
3: जी,
4: ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। नॉर्मल लोगों को जितना रिजेक्शन फेस करना होता होगा उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल से शुरू हो जाता है। आपके मना चलने का तरीका ठीक नहीं है या बोलने का ठीक नहीं, मैं कहूंगी डिफरेंट है, इट इज ओनली डिफरेंट, सो पीपल गिव यू नेम्स, वो आपको पीछे किसी किसी नामों से बुलाते हैं।
3: तो ये जो कॉन्स्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी आ रही है और बहुत बचपन से आ रही है, उस केस में बच्चा कैसे उसको हैंडल करेगा?
4: उस समय तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता कि वो डिफरेंट क्यों है,
3: क्यों है। हाँ,
4: उसको ये तो फील हो रहा होता है कि वो डिफरेंट क्यों है, लेकिन उसको भी नहीं पता वो इतना डिफरेंट क्यों है, एंड समवेयर वो अपने से युद्ध कर रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और वो कभी कभी सबसे अलग होकर के बहुत लोनली हो जाता है। सो आई थिंक हमें इस चीज की अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाने की जरूरत है। एटलीस्ट नाउ वी हैव रीच्ड अ प्लेस, अगर आप चाहें तो अपने को अवेयर और एजुकेट कर सकते हैं। पहले तो इस चीजों की कोई कॉन्वर्सेशन होती नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, लेकिन अब आप चाहें तो अपने को एजुकेट कर सकते हैं, एंड स्पेशली स्कूल्स में और कॉलेजेस में उस बच्चे को एकदम बॉयकॉट करना या उसको मॉक करना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इंक्लूजन, हर एक को इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस अच्छा लगता है, और ये फर्ज एज अ सोसाइटी, हर एक प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक मूवी के रेफरेंस से आपको समझाते हैं LGBTQ रिलेटेड लेबल्स के बारे में, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, 1959 में बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी धूल का फूल, उसमें साहिर लुधियानवी जी ने कमाल का गाना लिखा था, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब मैं उस गाने को सुनता हूँ मुझे लगता है ये लेबल की बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को कोई लेबल मत दो, हम लेबल के हिसाब से नहीं चलते, हम इंसान हैं इंसान ही रहेंगे। और मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है इस गीत की। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि प्राइड मंथ चल रहा है और मुझे गौरी सावंत हैं उनके बारे में याद आया, 2017 में वो एक ट्रांसजेंडर हैं और वो माँ बनना चाहती थी, तो उन्होंने गायत्री नाम के एक बच्चे को गोद लिया था, तो उस समय ये हक नहीं दिया जाता था ट्रांसजेंडर को कि वो अडॉप्ट कर पाएं। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप कैसे माँ बन सकती हैं, किस हक से आप माँ बनी, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात कही थी कि माँ के प्यार को लेबल नहीं देना चाहिए। और मुझे इतनी छू गई वो बात क्योंकि माँ का प्यार एक ऐसी असीम एनर्जी है जिसमें एक्चुअली कोई लेबल नहीं दे सकते, हर चीज में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब माँ की बात आती है जिनके घर में एक डिफरेंट बच्चा है, फिर वो माँ क्या करे कि रिश्ता भी बचा रहे और बच्चा भी बच जाए, क्योंकि अक्सर क्या है इस बात की ट्रेनिंग नहीं होती और उनको पता नहीं होता कि हैंडल कैसे करे। व्हाट शुड दैट मदर डू?
4: दैट इज व्हाई आई सेड कि अवेयरनेस और एजुकेशन मिलते ही कई बार आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपको जो चीज गलत लग रही होती है कोई आपको बताता है तो वो चीज आपको राइट लगने लगती है। सी, लव क्या है? लव इज अ वेरी क्लीशेड वर्ड ना। लव कोई बाहर की चीज नहीं है, इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स एन एनर्जी, इट्स फेल्ट। It is not what you're doing outside.
3: Right.
4: It is what you're thinking about that person.
3: Absolutely.
4: तो अगर अंदर में आप ये सोच रहे हैं उस बच्चे के बारे में कि ये अलग है या गलत है या हमारे घर में ही ऐसा क्यों है या सोसाइटी क्या कहेंगे, बाहर आप भले सब कुछ कर रहे हैं, आप केयर भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर जो लव है ना वो एक वाइब्रेशन है। जब तक आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि आई विल प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड नो मैटर व्हाट द सोसाइटी से, वो सिक्योरिटी उस बच्चे को फील होती है। पर कई बार सबसे ज्यादा रिजेक्शन घर से आता है, घर से आता है, क्योंकि वो फियर क्रिएट होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। इसलिए आप जो बात कह रहे थे ना कि हिंदू है मुस्लिम है या कोई भी आइडेंटिटी है या कोई भी लेबल है, इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत है टू बी काइंड एंड टू बी लविंग। कभी कभी वो बहुत सुंदर ये कहते हैं कि आप कितने रिचुअल्स करते हैं और कितने फास्ट करते हैं और कितनी प्रेयर करते हैं उससे अपने को धोखा नहीं दें, ये देखें कि आप दूसरों के प्रति कितने काइंड और लविंग है।
3: अच्छा, क्या बात
4: है। दैट इज ट्रू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ना।
3: एब्सोल्युटली।
4: चाहे कोई कितना भी डिफरेंट है, आप कितने लविंग काइंड कंपैशनेट हो सकते हैं वो ह्यूमैनिटी है। बाकी तो एवरीथिंग इज इन बुक्स ना फिर।
3: एब्सोल्युटली।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Overcompensation क्या होता है? आइए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, जब हम प्राइड मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, जून में प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो कई बार जब ऐसे माहौल के बारे में बात होती है, कुछ घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि जब हमें पता चलता है कि मेरा बच्चा या घर में कोई बच्चा अलग है, तो ओवर कॉम्पनसेशन की बात भी हो जाती है कि कहीं कहीं तो बात होती नहीं है, कहीं रिजेक्शन होता है, कहीं बर्दाश्त किया जाता है, और कहीं ओवर कॉम्पनसेशन भी की जाती है. तो ओवर कॉम्पनसेशन के केस में उन गार्जियंस को, उन लोगों को क्या बताया जाए?
4: एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड नॉर्मली.
3: यस.
4: ओवर कॉम्पनसेशन भी इसलिए होती है क्योंकि जैसे आपको एजुकेशन मिलती है और आप समझते हैं कि मुझे सबको अच्छे से ट्रीट करना है, सो समटाइम्स आप थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट अ नाइस थिंग, क्योंकि फिर भी आप उनको फील करा रहे हैं कि वो डिफरेंट है.
3: ये बहुत जरूरी है समझना.
4: आप अगर ज्यादा ओवर कॉम्पनसेट करते हैं या आप मॉक करते हैं, आप दोनों रीति से ये फील करा रहे हैं कि वो डिफरेंट है. एक्चुअली दे वॉन्ट टू फील पार्ट ऑफ द सोसाइटी.
3: ये बहुत अच्छी बात की कि मॉक भी नहीं करना. जब आप मॉक कर रहे हैं तो आप उनको बुरा फील करा रहे हैं, और जब आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं तब भी आप उनको नॉर्मल फील नहीं करा रहे.
4: बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिनके साथ ये होता है उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जब लोग ऐसा करते हैं ना, इट इज नथिंग टू डू विद देम, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी.
3: हाँ, सही बात है.
4: सी, उन्हीं लोगों के प्रति जो हम आज बात कर रहे हैं, ये जो पूरी कम्युनिटी है, यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल हु आर वेरी नाइस टू देम. उनके लिए जितना हो सकेगा करेंगे भी कुछ ना कुछ, कुछ जितना उन बना समझ है या कंट्रीब्यूट करना है या सपोर्ट करना है या हेल्प करना है, फाइनेंशियली करना है, एजुकेशन लेवल पर करना है, कर रहे हैं. वहीं पर कोई दूसरे लोग भी हैं जो उनको मॉक भी कर रहे हैं, जो उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं. लोग तो सेम है ना, पर ट्रीटमेंट डिफरेंट है. उसी कम्युनिटी के प्रति ट्रीटमेंट डिफरेंट है. इट हैज नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी, इट हैज अ लॉट टू डू विद दैट पर्सन. आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप वैसा व्यवहार करते हैं. एक ही चीज के प्रति दो लोगों के पर्सपेक्टिव
3: अलग होंगे,
4: दो लोगों का बिहेवियर, दो लोगों का ओपिनियन अलग होता है. सो इट्स अबाउट दैट पर्सन, इट हैज नथिंग टू डू विद यू.
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: LGBTQ community को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस पर्सपेक्टिव को।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरा एक दोस्त है जो ओपनली अपने आप को, वो लड़के पसंद करता है और वो कहता है कि भैया मैं ऐसा हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। तो मैं ये बात नहीं समझता था, मुझे नहीं समझता था। मैंने कहा भाई तुमको कोई पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बहुत बड़ी बात है उसके, बट उसने मुझे घूम के कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए विशाल। और मुझे तब समझ में आया कि हम कितने बेवकूफ टाइप के लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन शायद हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमको लगता मदद करना मतलब फिजिकल मदद करना, फाइनेंशियल मदद करना, लेकिन आप साथ में खड़े होकर भी मदद कर रहे हैं ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता।
4: उनको सपोर्ट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पर फिर भी आई विल नॉट से यू आर एंटायरली रॉन्ग। उस कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनिशियली चाहिए ही था, एज लॉन्ग एज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्योर प्लेस। आपका इंटेंट बुरा नहीं है, शायद उस व्यक्ति को नहीं चाहिए, पर कम्युनिटी को अगर किसी भी रूप से हम उनको हेल्प करते हैं, हमारा भाव तो मदद करने का है, सहयोग देने का है। सी होता क्या है, हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम खुद भी बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं और हम सामने भी सिर्फ बॉडी तक देखते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही।
4: चाहे वो काला है, गोरा है, गे है, लेस्बियन है, मोटा है, पतला है, हाँ। हमारा जो लेंस है वो सिर्फ बॉडी तक जाता है।
3: बिल्कुल।
4: एक्चुअली हम बॉडी नहीं है, ये तो हमने जैसे कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बॉडी के बियॉन्ड हम सोल है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग, वी आर बींग ऑफ लाइट। जिसने ये कॉस्ट्यूम लिया है, किसी का कॉस्ट्यूम मेल का है, किसी का कॉस्ट्यूम फीमेल का है, पर जो सोल है उसके अंदर दोनों क्वालिटीज है, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी।
3: अच्छा।
4: दोनों संस्कार है। किसी में ज्यादा कल्चरली आप जहाँ ग्रो अप होते हैं वो ज्यादा अवेकेंड होते हैं, और कई बार वो ज्यादा अवेकेंड होते हैं तो डिफरेंट कॉस्ट्यूम होते हुए भी वो अवेकेंड रह जाते हैं। बाकी अगर आप सोल को देखें, एज अ सोल, हर सोल को प्यार चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
6: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
5: Renew?
6: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
6: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islip.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
16: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोल का कोई जेंडर नहीं होता, पर लोग बायस क्यों होते हैं? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, जब सोल का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन शायद कुछ फैसेट्स होते हैं, जो आपने कहा फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं, सोल का जेंडर नहीं होता, तो इज्जत और प्यार बॉडी देख के क्यों मिलता है?
4: वही तो, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है ना एज अ सोसाइटी। व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट, हम कभी उसको, इसलिए इंसानियत क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना इंसान के नाते, तो ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, पर वो ह्यूमैनिटी है क्या? कि आप उस आत्मा को देखें ना, आप सिर्फ शरीर को नहीं देखें, आप सिर्फ बच्चे को नहीं देखें, आप गरीब अमीर को नहीं देखें, आप हिंदू मुस्लिम को नहीं देखें, देयर लॉट ऑफ लेबल्स। और हमारा जो व्यवहार है वो लेबल के आधार पर होता है। व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट लेबल? समझो एक रिलीजन है, उस रिलीजन के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग क्या है, वैसा मेरा आपके साथ बिहेवियर होगा। चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो नेशनैलिटी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उस लेबल के प्रति मेरे मन में कोई ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर आपके साथ होगा, उस लेंस के अकॉर्डिंग होगा। वरना जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी दृष्टि होगी। जो मेरी अवेयरनेस के अंदर है, अगर मेरी अवेयरनेस के अंदर है कि हाँ भले ये ट्रांसजेंडर है, डिफरेंट है, बट ह्यूमन बीइंग है, अगर मेरी ये अवेयरनेस है तो मेरी दृष्टि में आपके प्रति रिस्पेक्ट होगी, वृत्ति एटीट्यूड में आपके लिए गुड विशेस होंगी, कृति कर्म में देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी होगी। स्मृति के अंदर क्या है, वैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति, वैसी कृति और वैसी सृष्टि बनेगी। वो लोग भी आपके लिए फ्रेंड्स की तरह होंगे, इक्वल होंगे, उनको भी आप रिस्पेक्ट दे पाएंगे।
3: लेकिन अगर मेरे जहन में ऐसा है कि
4: ये गलत है
3: पाप या है, ये अलग लोग हैं, हाँ ये पाप है, तो फिर मैं उसी हिसाब से बिहेव करूंगा।
4: अलग भी नहीं देखते ना हम तो, अलग फिर थोड़ा, फिर गलत, फिर पाप, फिर नॉट एक्सेप्टेबल, बॉयकॉट, उतना रिजेक्शन, तो फिर एक्चुअली वो पाप थोड़ी ना कर रहे हैं,
3: हम कर रहे हैं।
4: कहने में बहुत इजी है वो पाप है, बट समटाइम्स आई फील द अदर पर्सन हु इज रिजेक्टिंग, हेटिंग, बॉयकॉटिंग,
3: वो पाप है, लेकिन हम तो पापी हैं।
4: पर ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना होती है। समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, उसको एक बेस बनाकर, उसको जस्टिफिकेशन बनाकर हम लोग कई बार गलत कर्म कर देते हैं।
3: इनफैक्ट वो तो पाप ही नहीं है, हम पापी जरूर बन गए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा. सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर. आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा. हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं. हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं. आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: इससे सीमा जैन का सवाल आया है कि अगर लाइफ में सभी लोग हमारे खिलाफ हों तो ऐसे समय में हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए।
4: थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सब अगेंस्ट क्यों है। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं तो कई लोग हमारे फॉर होते हैं, कहीं अगेंस्ट होते हैं, कहीं सहयोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, विच इज ओके।
3: सारे अगेंस्ट हो,
4: सारे अगेंस्ट होते हैं तो कई बार हो सकते हैं हमारे अंदर भी फॉल्ट है और हम शायद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। सारे अगेंस्ट होना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। बाकी ये जरूर है कि आप कभी भी कुछ करते हैं तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल।
3: बिल्कुल।
4: और अग्री डिसएग्री एक अलग बात होती है, अगेंस्ट अगेंस्ट तो ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों वो अगेंस्ट हैं, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। देखो, हर चीज में लोगों की दुआएं भी सफलता दिलाती हैं।
3: जी बिल्कुल।
4: उनका हमारे से संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम सही कर रहे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उनको कन्विंस करने के तो कोशिश करें। अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी फॉल्ट हो, तो रियलाइज करके, चेक करके चेंज करने की जरूरत है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट www.sacssny.org.
3: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
4: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings, subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुजीत ने सवाल भेजा। सिस्टर कहते हैं कि विद्यालयों में हमें सिखाया जाता है कि जीवन में नैतिकता और कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जन्म से गंभीर बीमारियां होती हैं उनको, उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो लोग पूछते हैं कि उस समय परमात्मा कहाँ होते हैं। जब बच्चे सही गलत भी नहीं समझते, उनके साथ ऐसे कर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो उनके कर्मों का परिणाम है या परमात्मा की इच्छा है? वो ऐसे सवाल उठने पर लोगों को क्या समझाया जाए ताकि वो परमात्मा को दोषी ना ठहराएं और सही दृष्टिकोण समझ सके।
3: जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक्चुअली हमें उस बच्चे के लिए दुख होता है। हमारा जो एक नेचुरल संस्कार है वो कंपैशन है, रहम है। किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन फिर ये भी एक सत्य है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। बस फर्क ये होता है कि जब कॉस्ट्यूम बदल जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता। अगर वो उसी समय पर हो, जैसे अभी आज कोई बच्चा बारिश में खेल रहा है और वो कल बीमार हो जाए, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता। आप कहेंगे मुझे तो पता था, मुझे तो पता था कि ये होना है। अब ये छोटी बात है, कोई लंबा समय से हैवी ड्रिंकर होता है, फिर किसी दिन उसका लिवर खराब हो जाता है, 40 इयर्स के बाद होता है, समझो। लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि मुझे तो पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था। आपको सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉज और इफेक्ट सामने सामने दिखाई दे रहा होता है। डिलेड भी है लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा है। पर कभी कभी कॉस्ट्यूम छूट गया। कर्म कॉस्ट्यूम ने नहीं किया है, कर्म आत्मा ने किया है। इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहते। आज महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे कर्म करे, देश को आजादी दिलाई। हम महात्मा शरीर नहीं कहते, महान आत्मा कहते
2: हैं।
3: तो कर्म आत्मा करती है। आत्मा ने कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है। आज आपको इस सृष्टि पर लोग गलत गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसी के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश गलत करते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं ना। और फिर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत करते करते शरीर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारा जीवन गलत किया, इनके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब वो फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं इसने ऐसा क्या किया। बट द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड इज कर्म। दैट इज द ट्रूथ, दैट्स द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड। पर कॉस्ट्यूम देखते हैं तो नहीं समझ में आता। कर्मा सोल करती है, सोल इज ऑन द जर्नी, इसे स्टार्ट ही कैरी फॉरवर्ड से होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। चाय गर्म है, कॉफी स्ट्रांग है और ब्रेकफास्ट क्रिस्पी है। और ये नया नया दिन शुरू हो चुका है क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। यहाँ पर तुम्हारे कम्यूट को थोड़ा सा और फिल्मी बनाते हैं, तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा और फनी बनाते हैं और तुम्हारे मंडे को थोड़ा सा लेस यकी बनाया जाता है। अभी वैसे मुझे पता है कि तुम अभी किचन में या तो परौंठे फ्लिप कर रहे हो या फिर जूम कैमरा ऑफ करके लाइफ को ऑन कर रहे हो या फिर कुछ लोग सिर्फ आई एम लिसनिंग टू रेडियो के नाम पर 10 एक्स्ट्रा मिनट ब्लैंकेट में पड़े हुए हैं। जो कुछ भी कर रहे हो हैशटैग रिस्पेक्ट, बिकॉज लाइफ एज इट इज प्रीटी चैलेंजिंग। उसके बारे में सोच सोच कर उसे और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम सोचेंगे फिलहाल बॉलीवुड के तड़के के बारे में, थोड़ा बैक होम के नॉस्टैल्जिया के बारे में, थोड़ी सी गॉसिप गपशप, न्यूज अपडेट्स के बारे में और अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, ये सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलने वाला है। साथ साथ में वेदर का फोकस भी मिलने वाला है और मैं बोले तो प्रिसिला तो मिलने ही वाली हूँ, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद छोड़कर जा रही है तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड लीव सम कमेंट्स ऑन माय सोशल मीडिया। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। ड्रॉप मी समथिंग टू मेक माय डे। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, be the beat.

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
4: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
4: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
4: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
4: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
4: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
4: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
4: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
4: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
4: है,
3: बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
15: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
16: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
13: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
17: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
18: ਉਹ
17: ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
19: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
20: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
17: ਦਿਸ 26 June ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
21: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
22: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
23: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता तो यू वुड नेवर सी मी अगेन, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पर निकल जाती। लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो मैं टाइम ट्रैवलिंग करती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब हम चलने वाले हैं आज का दिन हिस्ट्री में क्यों खास था ये पता करने। ईयर था 930। आइसलैंड ने दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली रनिंग पार्लियामेंट शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1868, टाइप राइटर का पेटेंट मिला। देन 1894 में ओलंपिक्स के बॉसेस ऑफिशियली नाइट हुए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। 1980 में इंडिया ने एक ट्रेजिक मोमेंट देखा व्हेन संजय गांधी डाइड इन अ प्लेन क्रैश। 1985 में एक और हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर, एयर इंडिया फ्लाइट 182 की ट्रेजेडी। आज के दिन उन सबको हम याद करते हैं जिनकी जिंदगियां उस दिन रुक गई थी। फिर 2016 में यूके ने कहा इट्स नॉट यू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रेग्जिट ने हिस्ट्री बनाई। तो देखा एक ही दिन में कितना कुछ घट सकता है। और अब अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारा मूड बनाने के लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। सुन रहे हो तो मुझे फॉलो भी कर लो जाकर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची mornings. और 15 हाँ सिर्फ 15 साल की एज में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम इंडिया जर्सी रिसीव कर ली है. BCCI ने वीडियो शेयर किया और कैप्शन ऑलमोस्ट स्टेडियम अनाउंसर मोड में था. लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट द नेशन हैज बीन वेटिंग फॉर एंड ऑनेस्टली सेम एनर्जी सेम. वैभव ने भी कहा है कि जर्सी देखते ही उनकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी और मुझे बस ये सोचकर हंसी आ रही है कि 15 पे हम क्या कर रहे थे. मैं होमवर्क अवॉइड कर रही थी, मेरी लाइफ में कोई क्रश था नहीं, दूर दूर तक करियर की कोई संभावना नहीं थी और पासवर्ड मेरा था Priscilla123 और मैं सोचती थी कि मैं बहुत बड़ी हैकर हूँ. लेकिन इमेजिन स्कूल आईडी से लेकर टीम इंडिया की जर्सी तक, दैट इज नॉट जस्ट ग्रोथ, दैट इज लाइफ इन फास्ट फॉरवर्ड मोड. एंड आई होप वो इसी तरह तरक्की करते रहे. अभी UK टूर आ रहा है और पूरा देसी कम्युनिटी अब ऑफिशियली इन्वेस्टेड है क्रिकेट में. एंड आई होप वैभव सूर्यवंशी शाइन्स लाइक ऑलवेज. एंड स्पीकिंग ऑफ शाइन, RK जूल्स लेकर आए हैं गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस. जीरो लेबर चार्जेस तुम्हें देने हैं, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हें देने हैं सिर्फ और सिर्फ RK जूल्स पर, जहां पर गोल्ड एंड डायमंड की असली वैल्यू एंड प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है. RK जूल्स पर मिलता है बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में, तो वहां जाना तो बनता है. फिलहाल मिर्चीदार गाना तो बनता है सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप अगर करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माय नंबर. स्टे

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है। पहले भी मैं
3: तुमसे मिला। Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
2: Jaitley of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी पता करें मौसम का हाल चाल क्या है। तो अभी फिलहाल बाहर का सीन ये है कि 70 डिग्रीज तो तापमान है इन फारेनहाइट एंड क्लाउडी वाइब्स है, लेकिन फील हो रहा है 73 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। एंड अराउंड 11 बजे रेन की एक्सपेक्टेड एंट्री होने वाली, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बरसात हो सकती है। बिल्कुल उसी दोस्त की तरह जो कहता है मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन लगाता है पूरे 2 घंटे। लास्ट 24 आवर्स में भी स्काई ने हमें काफी बरसात दी, 43 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। एंड आज भी कुछ बारिश बची हुई है अराउंड 5 मिलीमीटर्स विच इज एक्सपेक्टेड टुडे। तो आज वेदर ने ऑफिशियली डिसाइड किया है कि तुम अपने अम्ब्रेला के बिना बाहर नहीं जाने वाले हो, या फिर अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल बनाओगे तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा विदाउट अम्ब्रेला। और कंपैरिजन करें तो कल का टेम्परेचर था 64 से लेकर 77 डिग्री फारेनहाइट तक, और आज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, सेम तरह का ड्रामा है, लेकिन बरसात थोड़ी सी कम होने वाली है। और सर्वाइवल के लिए तुम्हें बाहर जाते वक्त लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, और SPF 50+++ की बिल्कुल ना करें, बिकॉज सन अराउंड द कॉर्नर ही है। एंड ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करें, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो तीन तीन अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले ओहायो की पुलिस ने एक फैंसी रोबोकॉप को रिटायर कर दिया है आफ्टर अराउंड 10 months, बिकॉज अपेरेंटली उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है काम पर, बस पार्किंग लॉट में राउंड्स लगाए हैं और वाइब्स बनाए हैं। कैमरा थे, टेक था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक्शन मिसिंग था, इसीलिए इसे रिटायर कर दिया गया है और रिफंड भी मिल चुका है। नंबर टू पर फुटबॉल वर्ल्ड का थर्मोस्टैट फिर गर्म हो चुका है। लायनल मेसी ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल स्कोर किया, लेकिन मैच के बिल्डअप पर कुछ डिबेट्स शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्ले कंटिन्यू होना चाहिए था और कुछ लोगों का कहना है कि फाउल चेक होना चाहिए था। एंड आखिरी खबर है दिल जीतने वाली फ्रॉम क्रिकेट। यशस्वी जायसवाल ने फादर्स डे पर एक नई मर्सिडीज SUV अपने डैड को डेडिकेट की है। फैमिली फोटो भी खींचा है विद रेड रिबन एंड फुल फील्स। फ्रॉम स्ट्रगल स्टोरीज टू फैमिली सेलिब्रेशन, कभी कभी सक्सेस का बेस्ट फ्लेक्स इज दिस। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ हम भी अब मूव ऑन करते हैं मिर्चीदार गानों की तरफ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से मुझे
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
7: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
6: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
7: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय Gurudev.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Duniya mein sirf do tarah ke log hote hain, wolf aur sheep. Main wolf hoon. To kya hai?
13: Wolf ki beti, wolf hi hoti hai sir.
12: Hamari ekloti.
14: Alpha.
15: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
16: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोट पोट कीता
17: की कह रहे हो
16: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता
17: की कह रहे हो
18: गिप्पी ग्रेवाल बिन्नू टिल्लो सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
19: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया
16: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
14: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
21: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी फैम, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और जापान ने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई से वीजा फीस उनकी बढ़ रही है, और छोटा मोटा नहीं बढ़ रही, सीधे 5 गुना ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि 5 टाइम्स वो अपनी वीजा फीस इंक्रीज कर रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये पहला मेजर वीजा फी रिविजन है सिंस 1978। इसका रीजन है इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट चेंजेस। सिंगल एंट्री वीजा की फीस अब 15,000 येन तक और मल्टीपल एंट्री वीजा की फीस 30,000 येन तक पहुंच सकती है फॉर रिवाइज फी स्ट्रक्चर। मतलब जापान तो स्टिल ब्यूटीफुल है, लेकिन अब पॉकेट पर थोड़ा सा असर होने वाला है इफ यू वांट टू विजिट जापान। लेकिन तुम्हारे पॉकेट को रिलैक्स करने वाली बात अब बताती हूँ। तनिष्क लेकर आए हैं फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम्हें $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम मिल रहा है ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस। और साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना गोल्ड रखा हुआ है जो कि 9 कैरेट से ऊपर है, तो उसे वहां पर लेकर जाओ, एक्सचेंज कराओ, और तुम्हें 0% डिडक्शन उस पर मिलेगा। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सुनते रहो मुझे और कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 7244। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा नाम है प्रिसिला। और आज 23 जून के बेबीज, ये तुम्हारा साइन है कि तुम नॉर्मल नहीं हो बल्कि प्रीमियम बैच हो। देखो कौन कौन तुम्हारे साथ बर्थडे स्क्वाड में है। ऑस्कर विनिंग पावर हाउस एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, मतलब इनका टैलेंट लेवल अलग ही है। सॉन्ग राइटर एंड सिंगर जेसन मार्स, एंड एक्टर्स में है सेल्मा ब्लेयर, जोएल एडगर्टन, एंड फुटबॉल लेजेंड में हेडबट वाले जिनेडिन जिदान। मतलब अगर तुम आज के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे ना, तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा जीनियस और थोड़ा वर्ल्ड क्लास एनर्जी अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन होल्ड ऑन, मैथ्स वाले भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एलन ट्यूरिंग, द मैन हुज आइडियाज हेल्प्ड शेप मॉडर्न कंप्यूटिंग, उनकी भी आज बर्थ एनिवर्सरी है। प्लस निकोल शर्जिंगर, मेलिशा राउच, डफी एंड म्यूजिक जज रैंडी जैक्सन, इन सबका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, रिमाइंडर, एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन बर्थडे के दिन कैलोरी वाला नंबर काउंट नहीं होता है। तो आज के दिन खाओ, पियो, ऐश करो, खुद को ट्रीट करो, एक्स्ट्रा चाय, जूस, जो कुछ भी पीना है वो पियो। और आज के दिन किसी को ये मत बोलो यार कि आज बस एक नॉर्मल डे है, बिकॉज इट इज अ डे टू सेलिब्रेट यू। एंड मुझे अपने बर्थडे शाउट आउट एंड बर्थडे इन्वाइट भेजा जा सकता है, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज एम RCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 64 7244. Stay tuned and stay hot.

0: by Gold Bars now at Raj Jewels.
1: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
2: पहले भी मैं तुमसे मिला.
3: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
4: विशाल मिश्रा
1: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
5: and SaiUSAInc.com.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
7: Inefficient.
8: Very complex.
9: Clumsy.
10: Confusion ही confusion.
11: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
14: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा.
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पे सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रेटिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्रायउंस के साथ गोल्ड की प्राइस अबाउट $200 औंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शंस में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग ऑप्शन में ज्वेलरी आपकी और गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: देयर यू गो, योर गोल्ड रेट अपडेट डन एंड डस्टेड. अब फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling for next 1 minute. क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हें बताने वाली हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर अराउंड द वर्ल्ड क्या कुछ घटा है. नंबर वन पर रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेड फाउंडर कुणाल शाह इज स्टेपिंग इन टू लीड व्हाट्सएप ग्लोबली. हाँ जी, वो ऐप जहाँ फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग शेयर होता है 83 टाइम्स और 100 मैसेजेस के थ्रू सर्वाइव किया जाता है फैमिली ग्रुप्स में, मेटा के मार्क जकरबर्ग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है बिल्डर मेंटालिटी है एंड ग्लोबल विजन है एंड प्रिटी सून ही कुड लीड व्हाट्सएप ग्लोबली. एंड नंबर टू पर यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा में महर्षि सुश्रुता का 90 किलोस का ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनवेल हुआ है. सुश्रुता को सर्जरी का फादर माना जाता है और उनकी राइटिंग्स सुश्रुता संहिता को सर्जिकल नॉलेज और अर्ली रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट में काउंट किया जाता है. एंड नंबर थ्री पर गाना के एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो पहले भी फुटबॉल इंजरीज के बारे में बोल्ड क्लेम्स कर चुके हैं अब हेडलाइंस में है आफ्टर सेइंग ही फोकस्ड ऑन हैरी केन अहेड ऑफ द मैच. इम्पोर्टेंट रिमाइंडर ये है कि फुटबॉल मैचेस गोल्स टैक्टिक्स और प्लेयर्स डिसाइड करते हैं लेकिन इंटरनेट अपनी थ्योरी खुद डिसाइड करता है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे सुनते रहो और साथ में मुझसे बातें भी कर लो. इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank je bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा, सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी नवीन, सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
13: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
12: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
19: की कह रहे हो?
18: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
19: की कह रहे हो?
0: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: और टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
18: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
1: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
2: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop everything क्योंकि मॉर्निंग अब हो चुकी है सुपर मॉर्निंग्स बिकॉज मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब आ चुका है राशि जोन पार्ट वन. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में.
2: मिर्ची राशि जोन
1: एरीज यानी मेष राशि. आज अगर घर या ऑफिस में ड्रामा आएगा तो गेस व्हाट, तुम अनऑफिशियल क्राइसिस मैनेजर बन जाओगे. बेसिकली तुम मैं होने वाली एनर्जी पोर्ट्रे करने वाले हो. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. कंफ्यूजन लेवल हाई है लेकिन गुड न्यूज ये है, नो वन एल्स अंडरस्टैंड्स लाइफ टुडे ईदर, सो रिलैक्स, प्रिटेंड कॉन्फिडेंस वर्क्स. लकी कलर इज ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि. यूरेनस एनर्जी है बॉस मोड में. इवन बोरिंग काम भी तुम्हें फील होने वाले हैं लाइक मिशन इम्पॉसिबल और तुम सक्सीड भी कर जाओगे. लकी कलर इज येलो. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि. लाइफ डिसीजंस आज फ्यूचर को ग्लो कर सकते हैं. जुपिटर सेज एंजॉय योर लाइफ. मैं हूं ना. लकी कलर इज ब्लू. लकी नंबर इज 2. दैट राइम्ड. लियो यानी कि सिंह राशि. सेकेंड चांसेस का सीजन है. जो पहले फ्लॉप था आज तुम उसे स्टैंडिंग ओवेशन बना दोगे. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि. ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है बट शाउटिंग कॉम्पिटिशन मत बना लेना यार. क्वाइट कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर टूडे. लकी कलर इज व्हाइट. लकी नंबर इज 4. एंड बाकी बची 6 राशियों के लिए फटाफट से आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स. मेरा नाम है प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पे. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Government Fiction.
1: Never buy investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: Mirchi Mornings.
3: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
4: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे राशियाँ।
5: मिर्ची राशि जोन।
4: लीब्रा यानी तुला राशि, नेबरहुड वाइब्स इंटेंस हो सकती है, पर तुम पीस मेकर मोड में हो। बेसिकली तुम HR प्लस थेरेपिस्ट का कॉम्बो बने हो आज। लकी कलर इज पिंक, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, रिएक्शन को कंट्रोल करो, क्योंकि आज तुम्हारी एनर्जी ही डिसाइड करेगी आउटकम वाओ होगा या नॉट ना होगा। लकी कलर इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ड्रीम्स थोड़े से डिलेड हो सकते हैं बट कैंसिल नहीं हुए हैं। इन शॉर्ट, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। कीप गोइंग, यूनिवर्स इज लोडिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जल्दी ही। लकी कलर इज पर्पल, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रिलेशनशिप्स रीबूट मोड में है। मैसेज करो, टॉक करो, थोड़ा इमोशनल अपडेट इंस्टॉल करो। लकी कलर इज ब्राउन, लकी नंबर इज 10। अक्वेरियस यानी की कुंभ राशि, स्पीक अप टुडे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आ रहा है और वर्ड्स ऑटो करेक्ट फेल होने वाले हैं। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। पाइसीज यानी मीन राशि, पीपल अंडर एस्टिमेट यू, परफेक्ट। आज तुम क्वाइटली सरप्राइज करने वाले हो लोगों को, फुल मैच चीज बड़ी हो, मस्त मस्त रिवील होने वाला है। लकी कलर इज सी ग्रीन एंड लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, तो वाइब करो ना मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और वैसे ही आज का फाइनल मोमेंट भी आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग। जरा मेरे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले फीफा की कुछ खबर बताकर जाती हूँ। ईरान टीम ने लॉस एंजलिस स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में एक 74 वर्ड का हैंड रिटन नोट छोड़ा है आफ्टर देयर ड्रॉ अगेंस्ट बेल्जियम। एंड ऑनेस्टली इट्स लेस स्पोर्ट्स अपडेट एंड मोर ह्यूमैनिटी का इंस्टाग्राम कैप्शन। उन्होंने लिखा है, दे केम विद प्राइड, प्लेड विद ऑनर एंड लीव कर रहे हैं विथ डिग्निटी। और सबसे ब्यूटिफुल लाइन उन्होंने लिखी, मे पीस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप प्रिवेल अमंग ऑल नेशंस। मतलब स्टेडियम के अंदर तो कंपटीशन ढेर सारा था, लेकिन बाहर कंपैशन छोड़कर गई है ईरान की टीम। सोच के देखो, जहां दुनिया स्कोर काउंट करती है, वहां पर कुछ लोग रिस्पेक्ट काउंट कर रहे हैं। और देसी लाइफ में तो हम यही करते हैं, हम कितना भी दूर क्यों ना हो अपने होम से, अपने पीपल से, लेकिन कनेक्ट करते हैं हमारे कल्चर और काइंडनेस की वजह से बाहर मिले दूसरे दोस्तों से, और उन्हीं को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स बना लेते। अब घर से इतने दूर तुम रह रहे हो, यहाँ पर भी तो तुमने अपने लोग जुगाड़ लिए हैं। एंड दैट इज दिल से दिल का कनेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले फॉलो करना मत भूलना मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट्स MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: यार अक्सर मैं ये बात कहती हूँ अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी कि द नेशन दैट आई बिलोंग टू इज प्रोक्रेस्टिनेशन।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और वाकई में यार ये procrastination एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लव्ज है जो बड़े होते होते कब हमारी दुनिया में आ गया ना पता ही नहीं लगा। लेकिन you know, बातों ही बातों में मैंने ये भी रियलाइज किया कि बचपन में भी हम procrastinators थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने आज हैं। हाँ, क्योंकि बचपन में अगर हम किसी चीज को टालोफाई किया करते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क हुआ करता था या फिर ट्यूशन जाना हुआ करता था। पढ़ाई से एनीथिंग पढ़ाई से रिलेटेड यूज टू बी प्रोक्रेस्टिनेटेड। बड़े होते होते ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन टर्म है ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में घुसता चला आ रहा है। सो मच सो दैट कि आज हम मस्ती मारने का जो चांस होता है उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स जो हैं वो कोई प्लान बना रहे हैं तो एक पल के लिए तो एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन जब वो प्लान पुख्ता हो जाएगा कि बनने ही वाला है हम टालने लग जाते हैं कि मतलब यहाँ काम आ गया, वहां काम आ गया, स्टक एट द ऑफिस, आई कांट मेक इट फॉर द प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई रियलाइज कि एज किड्स हम कितने सही थे यार, कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर किया करते थे यार एक दिन के अंदर। मतलब पढ़ाई चलो जबरदस्ती कर ली सो कर ली, लेकिन हर एक चीज में हम घुसे हुए होते थे। हाँ, मतलब अगर कोई कंचे खेल रहा है तो उसको बैठ के गौर से देखना कि वो कंचे कैसे खेल रहा है। भले ही मुझे कंचे खेलने ना आते हो, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ खड़े होके ये जरूर देखती थी कि ये कंचे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, अगर कोई कजिन बैठ के कोई बहुत ही बोरिंग कहानी भी सुना रहा है तो उसको भी हम टालोफाई नहीं करते थे, उसको भी बड़ी इंटरेस्ट से सुना करते थे क्योंकि मेरा कजन सुना रहा है। अगर कोई बड़ा घर से बाहर जा रहा है तो हमें भी जाना होता था। हम किसी भी चीज में टालोफाई वाला जो जोन होता था ना बिल्कुल नहीं करते थे। जहां मौका मिलता था वहां चौका लगा दिया करते थे कि नहीं यार यहां पर हमें फन मिल सकता है। और आज फन चल के आता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, हम दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई साहब कल आना। ऐसी भी क्या अडल्टिंग यार। इसीलिए कहते हैं कि जहां मस्ती मारने का मौका मिले ना यार चौका लगा दिया करो।

लाइक दिल तो बच्चा है जी, और इस बच्चे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखो यार। इनफैक्ट मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताती हूँ जिसकी आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो ना किसी भी चीज को टालता नहीं है, मतलब मस्ती से रिलेटेड काम को डेफिनेटली टाल देगा। उसके मन का बच्चा मुझे बहुत पसंद आता है। एक दिन ना हम लोग ऑटो में जा रहे थे, अब क्या हुआ कि जो ऑटो का टायर था वो पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से ऑटो रुक गया। ऑफ कोर्स तो काम चल रहा था, लेकिन उसने उस मौके को भी इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि उसे भुट्टे वाले की दुकान नजर आ गई। वो फौरन से गया, झट से गया, पट से वापस आया, भुट्टे 3 लेकर, एक ऑटो वाले भैया के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, और मस्त बैठ के हमने भुट्टे खाए। और उसने उस ऑटो का जो टायर पंक्चर वाला पूरा जोन और सैडनेस थी उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया कि यार ऑटो खराब हुआ तो हमें भुट्टे खाने का मौका मिल गया। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज मैंने उससे सीखी और आपको फौरन बता दी ताकि आप भी इसको इनकलकेट कर पाओ अपनी आदतों में। अच्छी आदतें हमेशा उठा लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी अच्छी आदत कि मुझसे इस वक्त आके मिल लेते हो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी में, जिसको कि अब मैं 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। और सुनो जरा, मेरी बात नहीं, अब ये गाना, स्टे ट्यून्ड।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
4: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
3: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
5: अभी न जाओ छोड़ कर.
4: 28 June, 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सही कहा है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्यार इंसान से क्या नहीं करवा लेता है। आपने वो मूवी देखी होगी बधाई हो बधाई, अनिल कपूर वाली बधाई हो बधाई।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आयुष्मान की बधाई हो से पहले, बहुत पहले, हमारे अनिल कपूर की बधाई हो आई थी यार, और ये फिल्म भी मैंने देखी थी। मैं कोई फिल्म उस टाइम पर नहीं छोड़ती थी, केबल पे जो फिल्म आती थी अपन सब देख डालते थे। सारी नई फिल्में वर वॉच्ड एज इफ टू डू लिस्ट टिक मार्क हो गया था। बट दिस फिल्म वॉज फन यार। क्या कॉन्सेप्ट था यार इस फिल्म का, कि एक हष्ट पुष्ट इंसान सिर्फ एक लड़की के प्यार में पतला हो जाता है। और मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिला था ये फिल्म देखने के बाद, हालांकि तब मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया था, लेकिन वो मोटिवेशन मुझे तब मिला जब इसकी जरूरत नहीं थी, और आज जब जरूरत है तो मिल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट यही बात एक दिन मैंने अपने जिम में अपने जो ट्रेनर है उनको बोली थी, जब वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप रेगुलर क्यों नहीं होते हो, मैम आप डाइट पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो, तो मैं उनको यही कह रही थी कि सर मुझे ना प्यार में पड़ना पड़ेगा यार वेट लूज करने के लिए, कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, प्यार में पड़ूंगी तो या तो ब्रेकअप के चलते मैं वेट लूज कर लूंगी रेज में, या तो फिर मोहब्बत के चलते कि मैं अच्छी दिखूं उस तेज में, पर ऐसे हमसे तो ना हो पा रहा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस फिल्म, व्हाट अ फन फिल्म यार, जहां पर अनिल कपूर का ट्रांजिशन दिखाया गया है। एंड यू नो व्हाट, ही वाज इन हिज 40s एट दैट टाइम आल्सो, क्योंकि आज भी वो यंग है, तब भी वो 40s के हिसाब से भी काफी यंग थे। बल्कि सेट पर तो ये पूरी चर्चा हुआ करती थी, सतीश कौशिक जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे वो ये बात कहा करते थे कि भाई अनिल में बहुत बिजली है, यानी कि बहुत पावर है, वो इसी तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे कि अनिल में बहुत बिजली है, जनरेटर से भी ज्यादा। बिकॉज अनिल कपूर जब बाकी सारे लोग शूट्स के बीच में रेस्ट कर रहे होते थे, बैठे होते थे, उपासियां ले रहे होते थे, अंगड़ाइयां ले रहे होते थे, अनिल कपूर जो लोग थे ना क्रू के, उनको इकट्ठा करके अंताक्षरी खेल रहे होते थे। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। आपको एक और किस्सा बताऊंगी फ्रॉम दिस फिल्म, विच इज अबाउट अ लाफ अटैक, जो कि शिल्पा शेट्टी को आया था। क्यों आया था बताऊंगी थोड़ी देर में, बट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
2: हमारी इकलौती
4: अल्फा.
5: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक.
8: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
10: Listener MI, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
9: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
9: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बधाई हो बधाई। ये मूवी तो किसको याद नहीं है यार, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, कीर्ति रेड्डी, जो अब कहीं नहीं नजर आती। तो ये फिल्म जो थी, इसको शूट करते हुए एक्चुअली हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी को अटैक आया था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कोई सीरियस बात है, तो बिल्कुल नहीं, ये फिल्म ही सीरियस नहीं थी, तो इसके सेट पे कुछ सीरियस कैसे हो सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाफ अटैक जो कि शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म की शूट के दौरान एक बार आया था। हुआ ये था कि सतीश कौशिक, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, वो बड़े मजाकिया इंसान थे, तो सभी जानते हैं। और सेट पर जो माहौल हुआ करता था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, एज इफ यू नो कोई पंजाबी वेडिंग हो रही हो, ऐसा सा माहौल था, इतना लाइट माहौल था। और एक शॉट में हुआ ये कि सतीश जी जब शिल्पा शेट्टी को गाइड कर रहे थे शॉट के बारे में फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, तो शॉट चल रहा था, लेकिन वो इस तरीके के हैंड मूवमेंट्स दे रहे थे, इस तरीके की साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि शिल्पा जो है ना, उनको लाफ अटैक आ गया। मतलब वो हंसते हंसते लोट पोट हो गई और वो शॉट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 7 से 8 टेक्स लगे उस शॉट को कंप्लीट करने में, तब जाके ऊपर वाले को हश थैंक यू बोला है बाकी सारी टीम ने। और अगर ना इस सेट की और आगे बात की जाए, तो ये सेट वो सेट है जहां मेरा दिल बड़ा होगा यार, अगर टाइम मशीन मिल जाए तो मैं भी जाऊं यार। क्योंकि इस सेट के जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने इस फिल्म के बारे में जब ये शूट रैप अप हो गया था, तो यही कहा था कि यार यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पंजाबी वेडिंग हो रही है, क्योंकि खाना इतना उम्दा, बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी खाना आया करता था। एंड ऐसा लगता था जैसे कोई शादी का बुफे लगा हुआ है। अब आपको भी लगा ना कि हाय काश हम भी उस सेट पे होते। जिस दिन मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी ना, मैं आपको भी इत्तला कर दूंगी, साथ पे चलेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक बात बताओ, क्या आपको पता है शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी थी?
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ज्यादातर लोगों को ये पता है कि शाहरुख खान की पहली मूवी वॉज दीवाना. But not really. Well, years ago, यानी कि 1989 में शाहरुख खान ने एक टेलीविजन फीचर फिल्म में काम किया था, जिसे कि लिखा अरुंधति रॉय ने था और डायरेक्ट किया था प्रदीप कृष्णन ने. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पर टेलीविजन के नाम पर डीडी वन हुआ करता था, तो ये वहीं के लिए बनी थी फिल्म. फिल्म का नाम था इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, जो कि एक टेलीविजन फिल्म थी नरेटिंग द फनी लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो कि आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था. And that person was definitely not Shah Rukh Khan, because Shah Rukh Khan was playing a character role in this film. और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ गेस हु वाज देयर, मनोज बाजपेयी. इनफैक्ट तब के जमाने के काफी सारे टेलीविजन एक्टर्स प्लेड सम और द अदर रोल इन दिस फीचर फिल्म. यूट्यूब पे जाओगे ना तो ये फिल्म आपको आज भी मिल जाएगी. गो चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
5: पहले भी मैं तुमसे मिला।
6: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
7: विशाल मिश्रा
4: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
8: and SaiUSAInc.com.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
12: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
11: हमारी इकलौती
13: अल्फा।
4: द YRF स्पाई यूनिवर्स गेट्स इट्स मोस्ट लीथल वेपन अल्फा। हंटिंग इन US एंड Canada सिनेमास फ्रॉम 3rd July। अ यशराज फिल्म्स रिलीज।
14: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
15: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इन टाइम्स जब लड़कियां अपनी उंगलियों की अंगूठियां दिखाकर बता रही होती है कि आई सेड यस, मुझे तो आज भी उंगलियों में अंगूठी की जगह पापड़ पहनना ही ज्यादा पसंद आता है यार।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड याद है आपको कैसे हम अपनी उंगलियों में ये पापड़ फंसाकर घूमा करते थे? कुछ घरों में इन्हें फ्राइम्स कहा जाता था, कुछ घरों में इन्हें पापड़ कहा जाता था, लेकिन हाँ एक बात थी कि हर कोई इसे उंगली में फंसा फंसा कर ही खाता था। देखा जाए तो बॉस, हम लोगों में स्वैग बड़ा था यार। मतलब पापड़ उंगली में फंसा के आज कोई खाता है? नहीं, ये ट्रेंड तो हमने ही शुरू किया और हमने इसे खत्म कर दिया। इस पापड़ को ना मैंने कभी प्लेट में लेकर नहीं खाया, बाय गॉड, ऑलवेज उंगलियों में पहन पहन कर ही खाया है, कभी येलो तो कभी रंग बिरंगे, बट टेस्ट हो या होल लुक, दिखते थे ये कितने चंगे। हे, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ दैट जेली जो कि अंगूठी के नग की जगह फिट हुआ करती थी, एंड इसे खाने के लिए भी ना उंगली में पहन लिया जाता था और हर बच्चा इसे चाट चाट कर खाता था। कितने क्लासी हो गए ना आजकल हम लोग, क्योंकि अब ऐसी जेली या पापड़ खाने में कितनी शर्म आएगी हमको। हाँ, अडल्टिंग बाबू भैया, अडल्टिंग। चलो इसी बात पर लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रैक, जिसे मैं डेडिकेट करती हूँ इस पापड़ और ये उंगली में पहनकर खाने वाली जेली को, जिससे मिलना पल दो पल का ही हुआ था लेकिन जिंदगी भर की याद है ये। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
9: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
10: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
11: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिस टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म रहना है तेरे दिल में आज तक भी हमारे दिल में ही रह रहा है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड ऑनेस्टली RSTDM की जो म्यूजिक थी ऐसी म्यूजिक ना उस दौर में तो क्या आज के दौर में भी मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर हमने कभी नहीं सुनी क्योंकि हैरिस जयराज का जो कॉम्पोजिशन था फॉर द एल्बम ऑफ दिस मूवी बिल्कुल ही हटके था। ये म्यूजिक आई डोंट नो किस जोन में बैठ के बनाया गया था क्योंकि जब ये म्यूजिक आया उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस ट्रेंड को शुरू करने की कोशिश करी कि यू नो कंटेम्प्रेरी टेस्ट और फील जो है वो गानों को दिया जाए लेकिन जो बात रहना है तेरे दिल में भी थी वो कहीं नहीं मिली। एंड यूजुअली लोग अपने प्यार का इजहार जो करते हैं वो बड़े मासूमियत के साथ ऐसे चुपचाप बैठे हुए थोड़ा शर्माते थोड़ा घबराते हुए करते हैं लेकिन इस गाने में तो प्यार के इजहार का कुछ अलग ही रंग नजर आया है। उछलते कूदते नाचते गाते अपने प्यार का इजहार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि
2: कहना

मैंने कहा ना, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हटकर है यार। और इस गाने में इस ख्याल का जिक्र किया गया है कि एक अजनबी पे मुझको एतबार क्यों है, हर घड़ी खुमारी क्यों है, धड़कने बता। और ये सवाल प्यार में पड़े इंसान को जरूर होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक जिंदगी जी चुके हो, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जिन्हें आप अपना अपना मानते हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन न जाने कहां से एक अजनबी आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके दिल में ज्यादा बड़ा प्लॉट खरीद लेता है और वहां बस जाता है। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार ये कल का आया हुआ इंसान, इसके ऊपर मुझे इतना ज्यादा एतबार क्यों है, इस पर इतना प्यार क्यों है, और बाकी सारे लोग जिन्होंने इतने सारे साल हमारी जिंदगी में इन्वेस्ट करे हैं उनका क्या। तभी तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना।

इसका जिंदगी में कोटा ही अलग चलता है। ये ना दोस्ती में आता है, ना रिश्तेदारी में आता है, ना फैमिली में आता है, ये एक अलग कोटे में चला जाता है। वो अलग बात है कि जब प्यार का इजहार, इकरार, प्रपोजल और न जाने क्या क्या हो जाता है, तो फिर वापस से वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप उसे अपना दोस्त बना लेते हो, फिर वो फैमिली बन जाता है, रिश्तेदारी में सभी आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो प्यार है ना, बस वो बहुत ही अलग जज्बात होल्ड करके रखते हैं अपने दिल में हम, है कि नहीं। चलो जी, नाउ विद दिस, यही गाना आपके लिए लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा तो मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot। मुझे कहना

छोटे होते ना मैंने टीवी पे एक फिल्म देखी और उस फिल्म के हीरोज देख के एक्चुअली गाना पर्टिकुलरली देखा, उसमें जो दो हीरोज थे उनको देख के मैंने ऐसे बोला, ये कैसे हीरोज हैं यार, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये दो हीरोज थे दीपक पराशर और राज बब्बर। भाई देखिए उस टाइम पे हम आमिर खान, सलमान खान ऐसे लोगों को देखते थे तो इनके कंपैरिजन में ऐसे लुक्स को कंपेयर करते थे ना। वो तो बाद में बड़े हो गए समझ में आया कि फिल्मों में काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको टैलेंटेड भी होना चाहिए। एंड राज बब्बर साहब स्पेशली इन दैट सॉन्ग, वो पार्टी सॉन्ग होता है उसमें वो ऐसे मुंह सा बना के रहते हैं बिकॉज अपेरेंटली जो हीरोइन होती है वो उनसे ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर रही है। तो राज बब्बर साहब ऐसे हैरान परेशान दोनों हाथ उन्होंने ऐसे पीछे बांधे हुए हैं। खैर मुझे आज भी याद है वो गाना कौन सा है, तो वो गाना सुनते हैं और सुनेंगे राज बब्बर साहब की फिल्मी जर्नी आज शो पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
6: पहले भी मैं तुमसे मिला.
7: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
8: विशाल मिश्रा.
9: अमित चेटी ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ. विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर फ्राइडे जून 26th हार्ड रॉक लाइव ईटेस अरीना अटलांटिक सिटी. बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
10: एंड saiusainc.com.
11: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: बहुत से एक्टर्स गुरुदत्त साहब, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन साहब इनकी फिल्में देख के फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर हुए, लेकिन राज बब्बर साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज बब्बर साहब की फिल्मों में आने की फर्स्ट इंस्पिरेशन थी दारा सिंह जी की फिल्में। एक इंटरव्यू में राज बब्बर जी ने शेयर किया था, सुनिए।
1: कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद जो दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी जिंदगी के अंदर दो फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया।
0: चलिए इसी बात पे दिलीप कुमार जी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: શું તમે હેલ્થકેર મેળવવા વિશે ચિંતિત છો? શું તમને ખબર છે કે ન્યુયોર્ક વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને નાના બિઝનેસ માટે ઓછા ભાવમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? એપ્લિકેશનની ચિંતા ન કરો. SACSS એનરોલમેન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ તમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે. અમારો સ્ટાફ વી કરતા વધુ ભાષા બોલે છે અને અમે તમને હેલ્થકેર મેળવવામાં મદદ કરીશું. સાઉથ એશિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સર્વિસીસને કોલ કરો 718-321-7929 અથવા SACSS ઓફિસમાં રૂબરૂ મુલાકાત લો 14302 45th એવન્યુ ફ્લશિંગ ન્યુયોર્ક વરહુ માહિતી માટે કરો www.sacssny.org.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
8: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ.
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
8: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ.
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
10: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
11: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.
8: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ.
12: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
13: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. Charu ke saath. Sirf Mirchi par.

0: आपको पता है राज बब्बर साहब और शाहरुख खान का क्या कनेक्शन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। वो ये कि 1973 से 75 तक जब राज बब्बर साहब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिल्मी पढ़ाई कर रहे थे, तब वहाँ पे छोटे से शाहरुख खान काफी आते जाते थे। इस बारे में शाहरुख ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हाँ, मेरे फादर जो थे बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे। और मैं 8-9 साल का था और सारा दिन बैठ के मैंने एक्टर्स को देखता रहता था। राज बब्बर साहब तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से, गोद में घूमता था मैं उनकी। मैं बता सकता हूँ, अभी वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं बताता हूँ। तब हम उस प्ले में किसिंग सीन था, वो बड़ा रियल लाइफ प्लेस हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे बोला, अंकल आप सच में किस करते हो उनको? तो कहते बेटा जाके आंटी से पूछ लो। तो उन्होंने मुझे काफी, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे बदमाशी सिखाई, लेकिन बहुत प्यार किया मुझको राज बब्बर साहब।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात पे हम दिल को छूने वाला ये होठों को छू लो तुम गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subha karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose. Weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची.

0: प्यार में लोग अक्सर पैसे भी गंवा देते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा काफी किया था राज बब्बर साहब ने, जिस फिल्म में उनको स्मिता पाटिल जी के साथ काम करने का मौका दिखता था वो अपनी प्राइस ऐसे हाफ कर देते थे 50%। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: जया ये सच है, मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। वो दोनों ही बातें थी, बेहतरीन एक्टर के साथ में, एक साथी के साथ में आप काम करें और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत, किसी के साथ उठना बैठना।
0: जी वैसे इनकी दोस्ती की शुरुआत नोकझोंक से हुई थी। पहली बार ये मिले थे 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर। मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट है पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: मिड और लेट 70s में ऐसा बहुत बार हुआ कि लक और शोहरत पाने का चांस राज बब्बर साहब के ऐसे साइड में से गुजर गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उनको रोल मिलते मिलते रह गया, या उनको साइन भी कर लिया गया तो बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली उनको पहचान मिली 1980 की बीआर चोपड़ा की इंसाफ का तराजू फिल्म से, जिसमें उनका रोल ना उफ इतना नेगेटिव था, कोई एक्टर ये रोल करने को तैयार नहीं था। इस बारे में सुनिए राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल क्लियर करते थे कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस करेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूंगा।
0: और ये खतरनाक नेगेटिव रोल वाली फिल्म देखने जब ये अपनी मम्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ थिएटर में गए तब क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sacssny.org. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या है?
6: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
5: हमारी इकलौती
7: अल्फा.
8: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: छोटी होती ना मुझे राज बब्बर साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि जो भी उनकी फिल्में देखो इतने नेगेटिव रोल कई कई में होते थे। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो वो पॉपुलर हुए ना वो 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू से पॉपुलर हुए, जिसमें उनका इतना नेगेटिव रोल था। और जब इस फिल्म के प्रीमियर पे वो अपनी फैमिली के साथ गए ना तब क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, फिल्म देखते रहे। उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे, इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था और खासकर औरतें बहुत गालियां दे रही थी, तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे कि उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए तो मैंने पाँव छू लिए उसके, तो मैंने जब पाँव छू तो मेरे सिर पे हाथ रख देती, बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी जो मेरी मेहनत थी, मैं लगा कि मेरी कामयाबी मिल गई, कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ, तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ।
0: क्या ही बात है, मजा आ गया सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप. Shall we renew our vows?
6: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
5: Renew?
6: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
6: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
1: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islip.
8: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता.
9: की कह रहे हो?
8: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
9: की कह रहे हो?
10: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिलो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
11: और टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
8: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
12: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
13: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Islip.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Purani Jeans with Charu only.

0: राज बब्बर साहब ने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलते मिलते उनको अर्ली 80s हो गया। इस बीच में उनके पास काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हाथ कुआई मुंह न लगी। बल्कि वो तो प्रकाश मेहरा साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म में कास्ट भी हो गए थे। ये कब हुआ था, क्या सीन था, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: 78 की बात, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। मेरे एक काम को देखकर प्रकाश मेहरा साहब ने बुलाया दिल्ली में मेरा एक, और मुझे उन्होंने दो फिल्मों के लिए साइन किया। मैंने कहा मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप मुझे काम दे रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म में काम दे रहे हैं, बहुत बड़ा रोल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ रहने को कोई जगह नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई दोस्त है। तो बोले क्या चाहते हैं? मैंने कहा अगर आप, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे एक साल की रहने की जगह दे दीजिए, देखना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा ओके, कब आना चाहते हैं? मैं सब 1 जनवरी 1979, उन्होंने अपने आदमी का तवन इसका एड्रेस लेके टिकट भुजवा। पहली बार मुझे हवाई जहाज की टिकट दी थी और मैं हवाई जहाज में बैठा था।
0: भाई बैठ के ये सपनों की नगरी बॉम्बे तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पहुँचते से इनके सपने टूट गए, क्योंकि जिस फिल्म की ये बात हो रही थी उसमें इनको हटा के शशि कपूर साहब को साइन कर लिया गया। अमिताभ बच्चन भी थे उस फिल्म में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
6: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: आपको पता है नमक हलाल फिल्म में जो रोल शशि कपूर साहब ने निभाया था उसकी फर्स्ट चॉइस विनोद खन्ना जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन विनोद खन्ना साहब तब फिल्में छोड़ रहे थे, तब एक नए एक्टर को साइन किया गया, राज बब्बर जी को। लेकिन उनके साथ फिल्म के काफी लोग काम करना नहीं चाहते थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लाया गया, उनके साथ अमिताभ बच्चन काम करना नहीं चाहते थे। तो इस फिल्म में रिप्लेस किए जाने के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: सर, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो छीन के और ले जाता था, लेकिन छीन के नहीं कहूंगा। मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने दो फिल्मों के लिए साइन किया था, एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल साइन किया था। यहाँ से लेके गए थे, मैंने उनसे कहा था भाई मुझे, मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए एक साल के लिए जगह दी। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तो मैं इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया। और बस वो घर वो कमरा था जिसकी वजह से आज मैं बंबई में अपना घर बना सका।
0: चलिए, घर भी बन गया, बाद में करियर भी बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: लेट 70s में जब राज बब्बर साहब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उनको दो बहुत बड़े रोल्स के लिए साइन किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक तो नमक हलाल में जो शशि कपूर साहब का रोल था वो, और दूसरा शक्ति फिल्म में जो अमिताभ बच्चन साहब का रोल था। दोनों रोल्स में उनको रिप्लेस कर दिया गया। शक्ति फिल्म को लेकर उनको काफी दुख हुआ, बिकॉज अपने आइडल दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका तब उनको नहीं मिला। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने दिल्ली में, मैं प्ले करता था, नाटक करता था, यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर अमीर सिप्पी साहब थे, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया। बाद में पहले साइन हो गया था।
0: वैसे इस फिल्म में अगर वो काम करते तो स्मिता पाटिल जी के ऑपोजिट होते। कोई ना, उसी साल भीगी पल के नाम की एक फिल्म में उनके ऑपोजिट हो गए। चलिए, जिस चीज ने होना होता है वो ऐसे नहीं तो वैसे करके हो ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
5: पहले भी मैं तुमसे मिला.
6: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा. विशाल
5: मिश्रा.
4: अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ. विशाल मिश्रा पागलपन टूर. फ्राइडे जून 26th हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी. बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
7: एंड saiusainc.com.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Listener MA, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: हाथ को आया मुंह न लगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत हुआ ऐसा राज बब्बर जी के साथ भी जब वो लेट 70s में अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भाई 1975 में NSD से पास हुए, फिर 1977 में एक फिल्मों वाला टैलेंट शो भी जीता। उनके थिएटर शोज देखकर उनको बहुत सारी फिल्मों में लेने की बात हुई, लेकिन किसी फिल्म से उनको बिना बोले निकाल दिया गया, किसी फिल्म से बोल के निकाल दिया गया। इनफैक्ट एक फिल्म में तो उनको एक बहुत ही वियर्ड वजह से निकाला जाने वाला था, लेकिन थैंक्स टू फिल्म की हीरोइन उन्होंने उस फिल्म में काम किया। वो कौन सी फिल्म थी, इस बारे में राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिए।
1: यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो चुका था, तो लोग बहुत सारे जानते थे। मोहन सहगल जी डायरेक्टर थे, वो फिल्म बना रहे थे दौलत। उस फिल्म में सारिका के अपोजिट एक रोल था, और वो सहगल साहब की वजह से मुझे दौलत फिल्म मिली। शूटिंग हुई, शूटिंग होने के बाद में प्रोड्यूसर को मेरी नाक अच्छी नहीं लगी कि मेरी नाक बहुत लंबी है। उन्होंने मेरे रोल के लिए विजेंद्र खाटके जी को ले लिया। थैंक्स टू सारिका जी, उन्होंने बोला प्रोड्यूसर को, आपने ले लिया, चलिए शूटिंग कीजिए, क्यों किसी का नुकसान करना। सारिका जी को याद भी नहीं होगा, लेकिन सारिका जी की फिल्म में मैं पहली बार आया था यहाँ मुंबई में।
0: Well, इस फिल्म की शूटिंग लेट 70s में हुई थी, लेकिन ये रिलीज जाके 1982 में हुई थी। और अभी हो रही है एक म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
11: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
12: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
13: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai.
16: Ek hi hota hai.
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बूंद बूंद सागर बनता है, कदम कदम एक राह बने।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है, पूरा निबंध लिखना हो तो शुरुआत एक वाक्य से ही होती है ना।
0: और एक वाक्य भी नहीं बोलने को मिला था राज बब्बर साहब को उस फिल्म में जिसकी शूटिंग उन्होंने सबसे पहले की थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
2: मैंने वो फिल्म 500 रुपए में करी थी, फिल्म का नाम था शारदा। वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नजर आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता नहीं पहचाना आपने, तो सारिका कहती है वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी।
0: वही लेट 70s की बात है और ये फिल्म फाइनली जाके 1981 में रिलीज हुई थी। तब तक तो राज बब्बर जी पता नहीं कितनी फिल्मों में कितने वाक्य कितने सही सही डायलॉग्स बोल चुके थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
3: अभी अलविदा मत

anytime. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका ट्यूसडे के शाम में। वैसे दोस्तों ट्यूसडे को ना हम वीक का अंडरडॉग भी कह सकते हैं, पर मजे की बात यह है कि दुनिया के कई कंट्रीज में ट्यूसडे इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ द वीक। मतलब आज का दिन सिर्फ काम के लिए ही नहीं, कामयाबी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और जब प्रोडक्टिविटी का प्रेशर हो तो एक शानदार शाम और भी जरूरी हो जाती है, और बस वही लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो ये शाम फुल है बॉलीवुड बीट्स, फिल्मी फील्स और आपके फेवरेट डेडिकेशंस के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस ट्यूसडे को ट्रेंडिंग विद द नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank je bolle ho na hamari nahi scheme hai ye. Madam, taaz scheme hai, wariya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी
2: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, ये पकड़ा।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अरे 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

स्पोर्ट्स फैन की ना एक बात बहुत ही अच्छी होती है, सबको कमबैक देखने में बहुत मजा आता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अब जबकि फीफा फीवर छा चुका है, तो हर फैन की नजर ना सिर्फ गोल्स पर नहीं है, कभी कोई टीम पहली मैच हारने के बाद किस तरह से एकदम जबरदस्त वापसी करती है ये भी उतना ही मजा देता है, या कभी कोई प्लेयर इतना प्रेशर होने के बाद भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देता है ये भी उतना ही जरूरी होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो स्टेडियम से लेकर लिविंग रूम तक सब एक ही बात बोलते हैं कि ये हुई ना बात, क्योंकि ये जो कमबैक स्टोरीज है ना, ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, इमोशंस में भी जी जाती है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई चीज़ दोबारा से फेलियर के बाद भी स्पॉटलाइट में आए, या फिर जब किसी पुरानी फेवरेट टीम को एक नया चांस मिले। और शायद इसीलिए जिंदगी में भी ना कभी कभी हम उन चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखते हैं जो काफ़ी टाइम तक हमने साइड पर रखी है। और शायद इसी थॉट के साथ तनिष्क लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आपकी वो ओल्ड ज्वेलरी का भी कमबैक एक नए अवतार में। तनिष नाउ टेक्स ओल्ड गोल्ड अबाउट 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर फुल वैल्यू एंड विद जीरो डिडक्शंस। आल्सो यू कैन गेट एडिशनल $5 पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इज़िलिन एंड गिव योर ओल्ड ज्वेलरी अ फ्रेश कमबैक विद न्यू डिजाइंस। और फीफा देखते वक्त आपको किस टीम की कमबैक स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
3: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
2: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
3: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
4: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या है?
5: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
4: हमारी इकलौती
6: अल्फा.
7: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहां मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेस एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखें ना तो मजा आ जाता है। मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है। क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर, और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सन्नई रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

की टाइम। दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनते ही लगता है कि ये तो ट्रेंड फॉलो करने नहीं आए हैं, ये अपना एक एहसास छोड़ने आए हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और कुछ ऐसा ही फील आता है एक दीवाने की दीवानियत टाइटल ट्रैक सुनते वक्त, क्योंकि आजकल हम गाने बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। रील देखी, हुक सुना, फिर नेक्स्ट स्वाइप कर लिया, लेकिन ये गाना ना उस रेस का हिस्सा नहीं लगता। ये आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। गाने की मेलोडी धीरे धीरे खुलती है और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, म्यूजिक और वोकल्स दोनों सांस लेने की जगह देती है, और शायद इसीलिए गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और फिर आती है विशाल मिश्रा की आवाज़। यार उनकी आवाज़ की ना सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उनमें परफेक्शन से ज़्यादा इमोशन सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि वो गाना गा नहीं रहे हैं, वो उस एहसास को एक्चुअल में जी रहे हैं। हर लाइन में एक सिंसियरिटी होती है, एक रॉनेस होती है जो सीधा दिल तक पहुंचती है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए विशाल मिश्रा के गाने आज के म्यूज़िक लैंडस्केप में एकदम अलग नज़र आते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे ट्रैक्स बीट और ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब उनके गाने मेलेडी और इमोशन को सेंटर स्टेज बना देते हैं, और शायद यही खास बात है इस गाने की भी। तो गाना ख़त्म होने के बाद लिरिक्स या हुक से भी ज़्यादा ना उसका मूड साथ रह जाता है, और शायद इसी वजह से ये गाने सच्ची में जीत जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये गाना सुना है तो ज़रूर बताना कि किस चीज़ ने आपको ज़्यादा होल्ड किया है, मेलेडी, लिरिक्स या विशाल मिश्रा की वो दिल से निकली हुई आवाज़। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सुनते हैं दीवानियत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ चीजों के लिए ना लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए सिर्फ पागलपन। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चाहे किसी के लिए रात भर जगना हो, एक गाने को 100 बार रिपीट पे सुनना हो, कॉन्सर्ट के लिए मीलों ट्रैवल करना हो, या फिर हजारों लोगों के बीच खड़े होकर पूरी आवाज से लिरिक्स गाना हो, यार इन सब के लिए ना लॉजिक नहीं पागलपन तो होना चाहिए। और इसी एहसास को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं विशाल मिश्रा अपने पागलपन टूर 2026 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो दिल की बात दिल से करते हैं, जो म्यूजिक को सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं अपनी कहानी का हिस्सा मानते हैं। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो आप तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है, एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है, और शाम हमेशा एक्सपेक्टेशन से बड़ी होती है। तो तैयार हो जाइए न्यू जर्सी एक ऐसी म्यूजिकल नाइट के लिए जहां सुर भी होंगे, जज्बात भी होंगे, और थोड़ा सा वो खूबसूरत सा पागलपन भी होगा जो जिंदगी को यादगार बना देता है। विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को जून 26th 8 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना अटलांटिक सिटी। तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। और दोस्तों मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बस बताना है कि पागलपन भरा कैसे हुआ, ये जो गाना है विशाल मिश्रा का, ये कौन से मूवी का है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट 9033647244, और अपना नाम अपना नंबर ईमेल आईडी भेजना, क्योंकि जल्द ही विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं फॉर फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि कैसे हुआ, ये गाना कौन से मूवी का है, और तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जिसमें पागलपन सिर्फ देखा नहीं जाएगा, महसूस भी होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पहले भी मैं

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. Na vietva la burga.
2: Mirci, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है
5: या बदतमीजी? बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
10: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
9: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
11: अभी न जाओ छोड़ कर।
10: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी, फ्राइडे जून 26 हार्ड रॉक एटलांटिक सिटी। बुक एट टिकट मास्टर एंड साई USA Inc.com।
0: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
16: ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
17: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
18: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
0: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
19: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
20: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, Oak Tree Road, Isalin.
21: బ్యాటింగ్ తో కాఫీ సారే కర్తే హై, విరాట్ ఏక్ హీ హోతా హై.
22: కోహ్లీ గోస్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, కోహ్లీ గోస్ ఔట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్.
21: ఫిల్మో మే విలన్ కో ధోతే తో బహుత్ హై, పర్ బచ్చన్ ఏక్ హీ హోతా హై.
23: ఇసే అప్ని జేబ్ మే రఖ్ లే పీటర్, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
24: एक ही होता है।
21: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग म्यूचुअल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल लॉन्ग वीकेंड। एक्सपेक्टिंग रेन एंड टुडे द यूएस मार्केट्स आर मिक्स्ड विद यूएस ईरान नेगोशिएशंस इन फोर्स एंड 38 मॉर्गेज 30 ईयर फिक्स्ड मॉर्गेज रेट्स ट्रिकल अप। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, if you are struggling with credit score or income limitation, Land Mortgage can certainly help you. We just closed a purchase transaction today where the client's loan was denied. Lack of employment history, debt to income ratio and credit scores. But the realtor was kind enough to steer the loan to Land Mortgage and we quickly helped them improve credit scores, employment history, restructured his loan and today he's a proud homeowner. So friends, buying your dream home, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Mortgage rates have been relatively stable over the past few weeks. Experts warning that hard borrowing costs are on the way. And millions of homeowners still have an opportunity to chop their housing cost by refinancing. But many of them are making a major miscalculation. So act fast and call Lion Mortgage as it is offering zero closing cost refinance option. So call us today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's go now, donkey. Have a funky time.
2: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स स्पाइसी क्रंची और देसी फन या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्यों, जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 deductions, and you'll also get an additional $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन, और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलेडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: वे वही आके ऐसा तेरे पैर मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी। प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
14: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
15: की कह रहे हो?
14: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
15: की कह रहे हो?
16: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
17: पर टिल्लो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
14: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
18: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
19: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
18: Renew?
19: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
18: What better way to celebrate than with something timeless?
19: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहां ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विद एम्स एजुकेशन, बिकॉज विद जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
6: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
7: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
8: अभी न जाओ छोड़ कर.
6: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, हम सब ने टाइटन की घड़ी देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक इंडियन वॉच ब्रांड दुनिया के मैप पर कैसी पहुंची? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जून ओटीटी पर एक सीरीज बहुत ही क्वाइटली बस क्रिएट कर रही है। जी हाँ, मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह रिपोर्टली JRD टाटा का रोल निभा रहे हैं और जिम शार माई फेवरेट जर्सिक देसाई का रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी बस एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने इंडियन कंज्यूमर ब्रांड को ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पेशली ना हम जैसे NRI ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी मेड इन इंडिया को प्राउडली देखते हैं ना, उसके पीछे का सपना और उसके पीछे की रिस्क जब जानने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सीरीज बिजनेस स्टोरी कम और एम्बिशन स्टोरी ज्यादा लगती है, तो मुझे जरूर बताइए कि आपने भी ये सीरीज देखी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। अगर देखिए तो आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
2: हमारी इकलौती
4: अल्फा.
5: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
6: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू

क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। वैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्ट बीट की तरह काम करता है, और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार विशाल मिश्रा की मेलोडीज में ना एक खास बात ज़रूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते ज़रूर है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज्ड गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। DM me on Insta @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे WhatsApp कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La virba, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
3: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
3: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
4: हाँ बताइए
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
4: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
4: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
3: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम
4: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: जा कहां रहा है
4: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेज रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
4: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
3: यार क्या बात कर रहा
4: हूं
3: मतलब
4: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
3: चल
4: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
3: आपको से फोन मत करियो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
4: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient.
9: Very complex.
10: Clumsy.
11: Confusion.
8: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: नो
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
17: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है
18: पहले भी मैं तुमसे मिला।
19: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा
17: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life Vishal Mishra's Pagalpan Tour Friday, June 26th Hard Rock Live ETS Arena Atlantic City Book your tickets at Ticketmaster.com
1: and SaiUSAInc.com
20: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
21: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
22: तेरा क्या होगा कालिया
23: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
22: अब मिर्ची खा
24: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक लेजेंडरी बारिश वाले गाने से। जी हाँ दोस्तों, जब भी बारिश की बात होती है ना तब एक गाना दिमाग में जरूर आता है, टिप टिप बरसा पानी। वैसे तो यार स्क्रीन पे देखो ना तो फुल ऑन रोमांटिक लगता है, एकदम फुल रोमांस इन द रेन। लेकिन पर्दे के पीछे रवीना टंडन जी ने बताया कि शूट कितनी ज्यादा टफ थी, मतलब रेन मशीन्स के साथ स्लिपरी फ्लोर और वो सारी और मल्टीपल रीटेक्स। वैसे तो यार डांस ग्लैमरस तो लगता है, स्पेशली रवीना जी इन द येलो साड़ी, पर सेट पर सबको बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो समझे दोस्तों, मतलब बॉलीवुड में ना यार रेन सॉन्ग रोमांटिक तो लगता है लेकिन पर्दे के पीछे सबकी बैंड बजती है। वैसे क्या आपने कभी इस गाने पे रेन में डांस करने की कोशिश की है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
5: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
6: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
5: Renew?
6: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
6: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
4: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स GIA सॉलिटेयर्स नेकलेसेस रिंग्स मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स कृष्णा ज्वेलर्स ओक ट्री रोड ईसलिन।
5: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फ्राइडे जून 26 हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकट मास्टर एंड sai.usa.inc.com।
6: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
7: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट
8: शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
9: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है उसे मैं मिस नहीं करने वाली, इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हमारी तीसरी डेट है तो क्या हुआ? Why don't you come home with me? Spend some time together. You will be absolutely safe. इसी बहाने से you will get to know me better as well. अभी इतना अमेजिंग सेल्स पिच था कि कोई ना कैसे कह सकता था. सो दिस वॉज टेक्निकली माई थर्ड डेट विद दिस गाय आई मेट ऑन अ डेटिंग ऐप. वो मुझे अपने घर लेकर गया एंड हिज हाउस वॉज गॉर्जियस. ठीक है, कैंडल्स वैंडल्स लगी हुई हैं जगह जगह. उसने कैंडल्स लाइट की, लो लाइंग लैम्प्स ऑन किए. द मूड, द वाइब वॉज परफेक्ट. एंड देन ही सेड, इफ यू रियली वॉन्ट टू नो मी रोशी, देन हमें एक चीज करनी चाहिए. एंड आई वॉज लाइक, ओके, दिस साउंड्स क्यूट. ये क्या नॉटी चीज सजेस्ट करने वाला है? एंड देन ही प्लेड अ पॉडकास्ट. दैट इज राइट, उसने एक पॉडकास्ट चलाया एज एन एंटी क्लाइमैक्स. और वो पॉडकास्ट इतना घोर बोरिंग. इट वॉज लाइक सम सीईओ ऑफ सम कंपनी और वो लोग कोई प्रोटीन पाउडर वाउडर बनाते थे. एंड ही सेड कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मैं ये बेच सकूं और आज देखिए मेरा प्रोटीन पाउडर कितना सक्सेसफुल है. एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट वांट टू कॉल अ कैब एंड गो होम, क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर अपनी दीवार पर 480 बार अपना सर पीटूं. दैट विल बी मोर एंटरटेनिंग देन दिस स्टूपिड लिटिल पॉडकास्ट. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी डेट तो गंदी हो गई, बट द ओनली वे